0: रहते हैं। इधर तुम सभापति बने, उधर मैं अपना जीवन सुधार आई, ब्याह किए बिना जीवन सुधार आई।
1: वही होटल मौज में।
0: हाँ, जीवन सुधारने अब हर बार जाना पड़ेगा, लेकिन तुम जलो मत, वो मौज वाला नहीं, इरादा है लखनवी वाला है, सिर्फ इरादा करता है बस।
2: इरादा तो वो घर बैठे भी कर सकता है, तुम्हें होटल आने की क्या जरूरत थी?
0: मैंने सच बताया। शेरू तुम्हारी कसम, अब उसकी सेवा में दूसरा ग्राहक नहीं लूंगी। असली नवाब है, जेबे भारी भर कम, पानी गुब्बारा खाता है, उर्दू में कुतुब मीनार बोलता है।
3: ये लाजवाब उर्दू उसी नवाब ने सिखाई?
0: बड़ा शीन का पाला है, उसकी बेगम बड़ी खुशबू वाली है, पावर जी भी खुशबू लेता है।
3: लानत है, किस खसियारे को नवाबी दिलवा दी।
4: प्यारा खसियारा मत कहो उसे, कोम दिला में मुगलाई तलवार चला चुका है, मगर जिसमें दिलकश है बड़ा शरीफ है। मुझे 500 रुपए दिए और हर हफ्ते देगा।
3: हर हफ्ते 500 रुपए कहाँ से लाइए?
0: ये 500 तुम्हें कैसे मिले निशा? क्या करना पड़ा तुम्हें बताओ ना,
5: बोलो ना। चला
0: गोया के चुनांचे।
3: गोया के चुनांचे, ये दोनों लफ्ज एक साथ बोले उसने?
0: हाँ, गोया के
5: जिंदाबाद,
0: चुनांचे
5: जिंदाबाद।